ने इन्हां दी माता मेरी घरवाली नारायण कौर छोटे छोटे सन जदों उह संसार छड गई हुण इह बच्चे लेके इत्थे आया हां चिंता विच हां हुण करां ते करां की उस साधु ने आख्या कोई गल नहीं साडे नाल साडे डेरे ते आ कोई तेरी दवा दारू कर दे कोई तेनूं जड़ी बूटी देने आ तेरा शरीर नौ बार नौ हो जाना है कहिंदे ने कि सरदार टहल सिंह नूं उहदे बच्चियां नूं लेके उह साधु जिहड़ा सी उह अपने डेरे विच आ गया अपने साथियों के विच आ गया ओनू कोई जड़ी बूटी घोल के पिउनी शुरू की उन्हें बच्चों नूं वेख्या बच्चे बड़े सुंदर ने बड़े सोहने ने उन्हें भगवे रंग दियां गिलतियां जड़ियां सन उन्हां दे तन उत्ते पा दित्तियां उन्हां दे केस कतल कर दिते हाथ ठूठे फड़ा दिते ते उन्हां मुंडिया नूं आख्या गल सुनो तुहाडा प्यो इत्थे है जिहड़ा बेहोशी की हालत विच ही है लगभग शरीर कमजोर बोलिया भी नहीं जांदा उहदे कोलों कहिंदे इहदे दवा दारू का प्रबंध करना है ते आपां संगत वाधू आउंदी है दरबार साहिब ते आपां उत्थे जाके भीख मंगनी है सरदार टहल सिंह दे दोवां पुत्रां नूं उस साध ने भीख मंगन ला दिता भेस ते साधुआं वाला सी पर है साधु नहीं सी क्योंकि भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन इह भेख साधुआं वाला पा के लोकां नूं ठगण दा इन्हां ठगां ने एक जरिया बनाया जिन्हां दी गल भगत कबीर साहब ने कीती है गज साढे तै तै धोतियां तेहरे पाए न तग गली जिन्हां जप मालियां लोटे हाथ न बग ओए हर के संतन अखिए बनारस के ठग है ठग पर ए ठगी मारदे ने साधुआं वाला भेस धारण करके उन्हां बच्चियां नूं ला के अगे आप उन्हां तों कुछ दूरी ते खलोंदा बच्चे छोटे हाथ च ठूठे फड़ाए हुए ने ते ठूठियां विच कुछ पैसे कुछ टके ने ते जदो किसे बंदे नू वेखदे ने ते ओ बच्चे जेड़े ने ओ हाथ विचला ठूठा खड़का के भीख मंगदे ने भीख मंगन लगे मिलदा साधु उन्हां दे ठूठे विचो कढ लैंदा ते फिर उन्हां नू तोर देंदा दरबार साहिब दे लागे श्री अकाल तख्त साहिब जेड़ी दर्शनी ड्योढ़ी है जिस पासे दो निशान साहिब लगे हुए ने चेते रखो जदो आपां इस दरवाजे थाली बाहर निकलदे आ ते सामने महाराज श्री चंद जी का एक मंदिर है जिस नूं संगल वाला अखाड़ा कहिंदे ने उदासी साधुआं दा भगवान श्री चंद जी गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे वड्डे सुपुत्र कहिंदे ने कि उस मंदिर दे लागे चाह दा खोखा उस चाह दे खोखे उत्ते गुरु की संगत जिहड़ी दर्शन दीदार करन वास्ते आउंदी है कई वार उस खोखे उत्ते बैठ के चाह पींदी है कहिंदे ने कि इह बच्चे जिहड़े ने उत्थे बैठे हुए लोकां दे कोलों भीख मंगण दे इरादे दे नाल अगे वधे अगले पासे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे हजूरी रागी भाई शांगा सिंह जी भाई चंचल सिंह जी उस चाह वाली दुकान उत्ते बैठ के चाह पींदे ने इह बच्चे लागे आए इन्हां ने ठूठा खड़काया जदों ठूठा खड़का के भीख मंगी ते भाई चंचल सिंह ने इन्हां बच्चियां दे चेहरे वल बड़े गौह दे नाल वेख्या उन्हें आख्या इह बच्चे जिहड़े ने ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਛਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਠੱਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਗੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚੈਂਚਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਚੈਂਚਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਆ ਭੀਖ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਲਿਬਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਭੇਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਲੁਕ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉੱਥੋਂ ਛੂ ਮੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੈਂਚਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸ਼ਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹ ਡੇਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਠੱਗ ਦੌੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਚੈਂਚਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬਜ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਚੈਂਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ

0: वाहे गुरु वाहे।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

0: जन परवान
1: प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान
0: प्रभ को सिमरे से बेहमो ताजे
1: प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे
0: प्रभ को सिमरे से सुखवासी
1: प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी
0: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला
1: नानक जानकी मंगेर वाला
0: प्रभ को सिमरे से पारि उपकारी
2: प्रभ को सिमरे तिन सत बरहारी
0: प्रभ को सिमरे
3: तिन शुरू करो
0: गौरी सुखमनी महला पांचवा श्लोक एक ओंकार।

0: नानक पावो सुख कले
1: सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया
0: हर का नाम जपत होए सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन परे
0: हर का नाम जपत निस्तरे
1: अनेक माया रंग तिख न बजावे
0: हर का नाम जपत त्यागावे
1: हे मार्ग हे जात अकेला
0: हर नाम संगोत सहेला
1: ऐसा नाम मन सदा त्याइए
0: नानक गुरमुख परम गत पाइए
1: टूटत नाही कोट लख बाही
0: नाम जपत ते पार प्राही
1: अनक विघन जाए आए संगारे
0: हर का नाम तत्काल हारे।

0: राखे।
1: उमरी औसत तुमते होए
0: नानक अवर न जान सोए।
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
0: हर को नाम जप निर्बल कर्म।
1: सकल क्रिया में उत्तम क्रिया
0: साध संग धर्म तुम ले लिया।
1: सकल उद्यम में उद्यम भला
0: हर का नाम जपो जी सदा।
1: सकल वाणी में अमृत वाणी
0: हर को जस।

0: व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पया ऊपर साक्षैन यो निर्गुण गुण कशु न बुझे
1: हे
0: प्रसाद तर ऊपर सुख बस है
1: हे
0: प्रसाद पी वह शीत जला
1: सुखदाई पवन
0: हे प्रसाद भोग है सब रसा
1: सामग्री संग साथ बसा
0: पीने हस पाव कर नेत्र रसना
1: इसे त्याग संग रचना
0: ऐसे दुख मूड अंध व्यापे आद अंत जो रखन हार
1: प्रीत न करे
0: राखी सेवा नव निध पावे ठाकुर सब सदा हजूरे राखी टहल पावे दरगह मान सदा सदा एहो फूलन हार संध्या को डी संग रचे
1: जो
0: छठ ना सो अस्थिर कर माने
1: जो सो दूर
0: छोड़ जाए किसका श्रम करे
1: संग सहाय जस पर हरे
0: चंदन लेप उतारे तुए अंध कूप में पतत बकराल तूत पशु की मानस जात हर वेख अंतर मल माया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान
1: अंतर व्यापे रोग स्वान
0: अंतर अगन बाहर तन सुहा
1: नर पाथर कैसे तले रहा
0: अंतर बसे प्रव आप
1: नानक के जन से समाप
0: उन अंधा कैसे मार्ग पावे
1: वहाँ
0: बाजार से बुझे डोरा
1: तो संगे पूरा
0: वहाँ बिशन पद गावे घुंग पिंगल पर्वत पर पवन
1: नहीं हो तुम्हारा उस हवन
0: अवतार करना मैं दीन बेनती करे
1: तुम्हारी कृपा करे
0: संग सहाय सो आवे न चीत के ग्रह पितर बसे
1: अंध के माया
0: माने मन है प्रतीत
1: आवे मुड़े चीत
0: मैर विरोध काम क्रोध मोह
1: झूठ विकार महालोक करो।

0: सार के संग मुख उज्जवल होता,
1: सार संग मन सलीक होता,
0: सार के संग मिटे अभिमान,
1: सार के संग प्रगटे सो ज्ञान,
0: सार के संग पूजे प्रभु नेरा,
1: सार संग सब होत मेरा,
0: सार के संग पाए नाम रतन,
1: सार के संग ऊपर जतन,
0: सार की महिमा बरने कान प्राणी,
1: नानक सार की शोभा ब्रह्मा समानी,
0: सार के संग अगोचर मिले,
1: सार के संग
0: साध के संग आवे बस पंच।

0: संग साध प्रभु बन आई।
1: साध के संग न कबहू तावे,
0: साध के संग सदा सुख पावे।
1: साध संग बस्त अगोचर लहे,
0: साधु के संग रजत सहे।
1: साध के संग बसे थान उचे,
0: साधु के संग मेल पहुँचे।
1: साध के संग दड़े सब धर्म,
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म।
1: साध के संग पाए नाम निदान,
0: नानक साधु के करवान।
1: साध के संग सब कुल उदार,
0: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे।
1: साधु के संग सोतन पावे,
0: संदे संग को बरसावे।
1: साध संग धर्म राय करे सेवा,
0: साध के संग को वास देवा।
1: साधु के संग पाप पलायन,
0: साध संग अमृत गुण गायन।
1: साध के संग सर्व थान गम,
0: नानक साध के संग सफल जन्म।
1: साध के संग नहीं कश काल,
0: दर्शन भेट तो निहाल।
1: साध के संग कलुखत हरे,
0: साध के संग नरक पर हरे।
1: साध के संग इहां उहां सोहेला,
0: साध संग बिछड़त हर मिला।
1: जो इच्छे सोई फल पावे,
0: साध के संग न मिलता जावे।
1: पार ब्रह्म साध रिद बसे,
0: नानक उतरे साध सुन रसे।
1: साध के संग सुनो हर नाम,
0: साध संग हर हरे गुण गाओ।
1: साध के संग न मनते बिसरे,
0: साध संग सर पर निस्तरे।
1: साध के संग लगे प्रभ मीठा,
0: साधु के संग
1: साध संग पै आज्ञाकारी,
0: साध संग गई हमारी।
1: साध के संग मिटे सब रोग,
0: नानक साध मिटे संयोग।
1: साध की महिमा वेदना जाने,
0: जेता सुने ते ताव के आने।
1: साध की उपमा तह गुण ते दूर।

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा नर लेप
1: जैसे जल में कमल लेप,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दुख
1: जैसे सूर सबको सोख,
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
1: जैसे राज राम को लागे दुर्पमान,
0: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
1: जो वस्ता को खोदे को चंदन लेप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का हे गनाओ
1: नानक जो पाव का सहज स्वभाव,
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे लागे जला,
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए परगास
1: जैसे तायु परगास,
0: ब्रह्म ज्ञानी के भीतर सतर समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान,
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
1: मन अपने है सबसे नीचा,
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पै
1: नानक करे,
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
1: ज्ञानी,
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया
1: पया,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की समृतवासी,
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योगा,
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार महा,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी रे
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला
1: ब्रह्म ज्ञानी सो भला,
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उदार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सर्व संसार।

0: ज्ञानी त्याग
1: राम ज्ञानी के मन परमानंद
0: राम ज्ञानी के मन सदानंद
1: राम ज्ञानी सुख सहजन वास
0: राम ज्ञानी का नहीं निवास
1: राम ज्ञानी ब्रह्म का वेता
0: राम ज्ञानी एक संहिता
1: राम ज्ञानी कै होए अचिंत
0: राम ज्ञानी का निर्मल मंत
1: राम ज्ञानी जस करे प्रव्याप
0: राम ज्ञानी का वट प्रताप
1: राम ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए
0: राम ज्ञानी को बल बल जाइए
1: राम ज्ञानी को खोजे महेश्वर
0: नानक राम ज्ञानी आप परमेश्वर
1: राम ज्ञानी

0: कई कोट पवन पानी में संतर
1: कई कोट देश को मंडल
0: कई कोट शशियर सूर नक्षत्र
1: कई कोट देव राम इंद्र से छतर
0: सगल समग्री अपने सूत धारे
1: नानक जिस पावे।

वार्प श्रेयोपासार कोट चिन्हे वो पात काका अंत न जाने कोए कोट पार ब्रह्म के दास कई कोट तत् के भेते कई कोट नाम रस पीव है कई कोट नाम गुण गाव है।

0: राम विचार
1: ज्ञान के आप मिलावन हार
0: कबहु नृत्य करे बहु पांत
1: कबहु सोए रहे दिन रात
0: कबहु महाक्रोध विकराल
1: कबहु सर्व की हो करवाल।

0: होए पंडित करे बख्यान
1: अबहु मोर ताली लावे ध्यान
0: अबहु तत् तीर्थ स्नान
1: अबहु सत साधक मुख ज्ञान
0: अबहु कीट हस्त पतंग होए जिया।

0: सार संगते हो पावे
1: शांति पहुनावे
0: अंतर होए ज्ञान पर गास
1: स्थान का नहीं विनास
0: मन तन नाम रते एक रंग
1: सदा बसे पार ब्रह्म के संग
0: जो जल मह जल आए खटाना
1: जो जो

जो जाने में जोबन पंत आपस को कर्म पंत कहावे धन भूमिका जो करे गुमान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे धनवंता होए कर गरबावे बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस सब ते आप जाने बलवंत जिसे न बदे आप अहंकारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान कोट कर्म करे हो तारे अनक तपस्या करे अहंकार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे।

जब लग जाने मुझ ते कश होए, जब एह जाने मैं किश करता, जब तारे को बैरी मीत, जब लग मोह मगन संग माए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, सहस खट्टे लख कोठ तावे, अनक भोग बिखिया के करे, बिना संतोख नहीं को राज्य, नाम रंग सर्व सुख होए, कर्ण करावण आपे आप, कर्ण करावण करने हार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, जो किश किन्नो सो अपने

मन में है आप मन अपने माहे सत सत सत प्रभ स्वामी सच सच सच सब कीना भला भला भला तेरा रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी।

0: रहत
1: संत
0: निंद का तुर ही पया
1: नानक ज्योति सुभावे सोई दिया
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
1: संत के दुखी को दर्द मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाई।

0: जिस घर पर साल तू टहारोगे
1: नान सोजन सतारोगे
0: मंदर का था मैं थमन
1: यो गुर का शब्द मन है समन
0: खान नाव चढ़ तर
1: प्राणी गुर चरण लागत में सर
0: अंधकार दीपक प्रगास
1: गुर दर्शन देख मन होए विलास
0: महाध्यान में मार्ग पावे
1: यो साधु संग में जोत पड़ा है
0: संतन की भाषा दूर
1: नानक की आलोचना पूरा
0: मूर्ख काहे बिल लाया भूख सुख प्रभ देवन हार
1: अवर त्याग तू से तार
0: कष करे सोई सुख मान
1: भूला काहे बिल जान
0: बसताई तेरे संग
1: लाभ करे हो रस लोगी।

रूप मंगल सत जाके राज में राज जोग में जोगी आए ध्याय भक्त है सुख पाया।

बारंग बार बार प्रभ जपिए नाम रतन जन गुरमुख पाया नाम तन नाम रूप रंग नाम रस जो जन तिप ताने उठत बैठत सोवत नाम बोलो जस हे बाजने।

जिस विश्वे गुर का मन माने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ सर्व निदान जी का दाता ब्रह्म में जन जन्म है पार ब्रह्म सहस स्यान पलया न जाइए सफल दर्शन पेखत पुनीत पेटत संग राम गुण रवे सुन कर बचन करन आगाने पूरा गुर अखियो जाका मंत्र गुण बेअंत कीमत नहीं पाए जिहबा एक औसत अनेक काहू बोल न पहुँचत प्राणी निराहार निर्वैर सुखदाई अनक भगत बंधन नित करह सद बलिहारी।

0: संत जना मिल कर हो विचार
1: एक सिमरन नाम रे वार
0: और अपाप समेत विसार हो
1: चरण कमल रे वार
0: अन्न कारण सो प्रभ समरथ
1: कर रहो नाम हर वक्त
0: यह स्थान सांचो हो वह भगवंत
1: संत जना का निर्मल मंद
0: एक आस रखो मन माह
1: सर्व विरोध नानक मिट जाए
0: स्थान को चार कूठ उठतावे
1: तन हर सेवा के पावे
0: सुख को नित बादशह।

0: कह हर अगम अपार
1: सब
0: निर्गुण प्रभु सहज सुभाए
1: सब
0: आप है आप अपनी ज्योत तर अपन चले ते आप करने हार अविनाशी सुख अपने आसन
1: जब
0: पूर्ण करता प्रभु सोय जब व्यक्त गोचर प्रवेक जब नाथ निरंजन गोचर गादे अपनी आप अपी चार्ज निर्मल पुरख पुरख पत होता
1: है
0: निरंजन निरंकार निर्वाण स्वरूप केवल जगदीश ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे रावण कारण हार अपनी शोभा आपन संग बनाई सर्व कला आप है परवीन आपन आप पर तारा।

0: पौरवांता
1: जय कौन चिंत से लागे चिंता
0: जय आपने आप पति आरा
1: जय कौन कहे कौन सुनने हारा
0: भव्य अंत ऊंचते ऊंचा
1: नानक आप सो आपे पहुंचा
0: आप रचियो पर पांच

0: युक्त जाके सब हाथ
1: अंतर्वाह जनो साथ
0: पूर्ण दान बेअंत पार
1: नानक दास सनातन हार
0: पूरन पूर रहे दयाल
1: सब ऊपर हो कृपा
0: अपने।

0: फल पारो,
1: अलथ परत गोय लेहो सुमार,
0: राम नाम अंतर उतार,
1: पूरे गुर की पूरी दिख्या,
0: जस मन बसे ते सार प्रीख्या,
1: संतन नाम जपो ले बलाए।

संत संग अंतर प्रभ डिठा सगल सुमिगरी एक स्कट माहे नौ निधि अमृत प्रभ।

0: तुम्हार
1: सास सास सिमरह गोविंद
0: मान्यांतर की
1: सास नित्य त्याग हो तरंग
0: संत जना की
1: आप छोड़ बेनती करहो
0: हर
1: धन के भर लेहो भंडार
0: प्रेम
1: कुशल सहज आनंद
0: नरक
1: निवार उधारो जियो चित चित बहो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग
1: गोपाल दामोदर दीन दयाल
0: पंजन पूरन के पाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का
1: उत्तम श्लोक साध के बचन सुनत कमावत होत उदार सफल जीवन सफलता का संग जय जय शब्द अनाहद वाजे प्रगटे गोपाल महात के माथे सरन जोग सुन सरनी आए मिट गए बैर पे सब रेन प्रसन्न पे गुरुदेव आल जंजाल विकार ते रहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी प्रभ की औसत करहो संत मीत रुक्मिणी सहज गोविंद गुण नाम सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए सब ते ऊच पाए स्थान हर धन खाट चले जन सोए हेम शांत रिद नव निद विद्या तप जोग प्रभ ध्यान चार पदार्थ कमल प्रकाश।

इस पंक्ति विच अरजोई है, बेनती है, सारा शब्द बेनती है, अरदास है। कीती हुई साधना, कीता होया जप तप, वही सफल है जो मनुख नू अरदास तक ले जाए, बेनती तक ले जाए। कुछ धर्म ते ऐसे ने जैसे ईसाई, भी चर्च क्यों जा रहे हो? प्रेयर करन जा रहे हैं, अरदास करन जा रहे, सिर्फ अरदास करन जा रहे हैं। साढ़े च ऐसा नहीं, कीर्तन सुनन जा रहे हैं, कथा सुनन जा रहे हैं, गुरु दे दर्शन करन ले जा रहे हैं, सत्संगियां दे दर्शन करन जा रहे हैं, सेवा करन ले जा रहे हैं, पुन करन ले जा रहे हैं। ये सब कुछ कीता होया पुन, सुनया होया कीर्तन, सुनी हुई कथा, इसका फल की है अंदरों अरदास दा निकलना। वो अरदास फिर व्यर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। ये कदों निकलती है? जप कर करके निकलती है, कीर्तन सुन सुन के निकलती है, कथा सुन सुन के निकलती है, पाठ कर करके निकलती है। उंज नहीं निकलेगी, उंज बथेरी अरदासा आउंदी ने ते मनुख कर। कोई रस्मी अरदास, दीवान दी अरदास, दिल दी गहराई चो अरदास निकलती है, जप कर करके, तप कर करके, साधना कर करके, कीर्तन सुन सुन के, कथा सुन सुन के, बाणी पढ़ पढ़ के, पाठ कर करके, उंज अरदास नहीं निकलती दिल दी गहराई च। और जदों ये अरदास निकलती है फिर व्यर्थ भी नहीं जाती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल दी गहराई चो जड़ी अरदास निकली है खुदा तक पहुंचेगी। इसे नु गुरबाणी कहती है, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। सारे शब्द विच एक अरदास है, यक अर्ज असी अरदास कहने हैं, परशियन दे कहने ने अरजोई करने, अर्ज करने, अर्ज करने, अरजोई है। संस्कृत दे हिंदी च कहने ने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। फारसी च कहने ने अर्ज करनी है, अरजोई करनी है। गुरु नानक ने एक शब्द नो जन्म देता है, अरदास करनी है। ते अरदास दे जो मैं अर्थ समझे ने ते पढ़े ने, अर्जे दास्त हाथ जोड़ के अरजोई करने, दस्त बस्ता हथानू जोड़ के अरजोई करने, बेनती करने, प्रार्थना करने। सतगुरु कहंदे ने यक अर्ज, एक मेरी अरजोई, एक मेरी प्रार्थना, एक मेरी अरदास। यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, गोश कन्ना नु कहंदे ने। ऐ करतार जे तू कन ला के सुने, मनुख जिथे आउंदा है उथे ही उसके कन आउंदे ने। घर विच बैठीए मां ते सानू कुछ सुनाना चाहे नहीं सुन सकते, क्योंकि असीं जिथे बैठे कन उथे ही ने। जिथों सानू सुनाया जा रहा उथे साडे कन कोई नहीं। मनुख जिथे आउंदा है उसदियां इंद्रियां उथे ही आउंदियां, उसदी जबान उथे ही आउंदी है, उसदियां अखां उथे ही आउंदियां। जिथे है उथे ते वेख सकदा है, जिथे नहीं है नहीं वेख सकदा। जिथे है सुन सकदा है, जिथे नहीं है नहीं सुन सकदा। मनुख जिथे है उहदे ज्ञान ते जद व्यापक है ते उहदा सुनना भी व्यापक है। किसे थां भी अरजोई कीती जा सकती है, किसे थां। परमात्मा व्यापक है, उदा वेखना भी व्यापक है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हे प्रभु तू कन कर भाव सुन, हे करतार हे सृष्टि दे रचनहारे। एक अरजोई एक बेनती है, फिर अगलियां पंक्तियां च जिस दे अगों बेनती कर रहे ने उसकी महिमा बयान कर देना। हां जी,

ज्यों अद कहो तो सुख घना, जितना पानी ज्यादा होवे मच्छी ओनी प्रसन्न है। कहन लगे ज्यों अद कहो तो सुख घना, मन तन शांत शरीर, ओदे तन नू ओदे मन नू खेड़ा, क्योंकि मच्छी पानी विच रह के आत दी आनंद विच है। ऐसी प्रीत कर। बाबा जी ने तीसरा प्रमाण दिता कि प्रेमा भगती की है, मच्छी पानी तो बिना किसी नाल समझौता नहीं करती। तीसरा प्रमाण दितो ने कि रे मन ऐसी खरसो प्रीत कर, नानक नाम निरंजन जान्यो। इस तरह कहन लगे रे मन ऐसी खरसो प्रीत कर, जैसी चात्रक में जिमें एक पपिया स्वांति बूंद नू प्यार प्या करदा है, जिमें एक चात्रक नक्षत्र तो डिगण वाली बूंद नू उडीकदा प्या है। ओदे सामने सरोवर पानी दे भरे ने, पर कदी ओ सरोवर दा पानी नहीं पिएगा। तालाब पानी दे भरे ने, पर चात्रक उस पानी नू पसंद नहीं करेगा। दरिया पानी दे भर के वगदे ने, पर कदी भी ओ इस नू प्यार नहीं करेगा। पर प्यारियो सब कुछ ओ पानी वक्रे वक्रे तालाबां दे खूहां दे नदियां दे नालियां दे त्याग देगा। ओदे प्राणा दी जेड़ी प्रीत है ओ केवल ता केवल परम पिता परमेश्वर दा नाम है। जिवें चात्रक स्वांति बूंद नू प्यार करदा है, ते रब दी बंदगी करन वाला सब कुछ छड़ देंदा है, सच जानो ओनू केवल गुरु ते परमात्मा ही चाहिदा है। मैं एक खिन विचों निकल के एक प्रमाण एदे नाल होर अर्ज करना चाहना। चात्रक कदी भी समझौता नहीं करता स्वांति बूंद तो बिना। मेरे गुरु अर्जुन साहब नू पुछया, दाता जी प्रेमा भगती की है? उन्होंने एक प्रमाण दिता, ओहा प्रेम पिरी, प्रेमा भगत की है? ओहा प्रेम पिरी, कहन लगे कनक मानक गज मोतियन लालन नह नहा नहीं। प्रेमा भगती एक है कि जे कोई प्यारे दे सामने लिया के हीरियां दे ढेर ला के कह तू बंदगी छड़ दे, गुरु नू छड़ दे, कीमती हीरे चुक ले। जे कोई ओदे सामने कीमती मोती लिया के कह मोतियां नाल झोलियां भर ले, पर नाम दे मोती नू छड़ दे। जे कोई ओदे सामने कीमती गज, ए भी मोती है, सामने लिया के रखे तू परमात्मा दी इबादत छड़ दे। साहब कहंदे ने जेड़े प्रेमा भगती करन वाले ने, ओ कह रहे ने ओहा प्रेम प्री कनक मान गज मोतियां लालन नह नह नहीं। जे कोई कह चल हीरे मोती छड, तेनू आ तखत दे देने, तेनू आ दुनिया दा हर स्वाद हंडाण वास्ते भोगां वास्ते पदार्थ दे देने। अगो उत्तर मिलदा, राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किच किच ना चाही। नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिवलाई। ओहा प्रेम प्री कनक मान गज मोतियां लालन नह ना नहीं। राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किच किच ना चाही। ओनू चाहिदा कि चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही। कहन लगे नानक तपत हरी मिले प्रेम प्री, एवे प्रेमा भगती, मेनू तेरे चरणा दी शरण चाही दिखे। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिवलाई। भगती प्रेमा ला लिव ला के कीती, ते मेरे सच्चे पातशाह ने फिर बाणी विच कहा, रे मन ऐसी खरसो प्रीत कर, जैसी चात्रक में सार भर थल हरी आवले। पर प्रेमा भगती करने वाला बूंद नू एक बूंद ना पवही, के जितने मर्जी पानी दे भंडार होण, पर चात्रक दी प्यास केवल स्वांति बूंद ही बुझाए। साहब ने पहला प्रमाण कमल फूल दा दिता, दूसरा कृपालू दाता जी ने मच्छी दा दिता, तीसरा प्रमाण सच्चे पातशाह ने मेर कीती चात्रक दा दिता, ते चौथा प्रमाण दिता प्रेमा भगती है कि प्रेमा भगती कीती। ते गुरु नानक साहब दे अमृत बचन असी पढ़ने, प्यारे प्रेमा भगती है कि अपनी ता एक जबान भी टेक के गुरु गुरु नहीं जपदी। जे किते टिकन दा यतन करिए, पांच सात मिनटां भी थक जांदी है। टेक के बंदे तो रब रब क्या ही नहीं जांदा। सारा दिन आदमी तो गल्लां करानियां होण, निंदिया करनी होवे। मैं कई बारी अर्ज करना, बंदा बीमार होवे ना, हमदर्दी प्रगट करन जाइए, ते ओ बड़ा ऐसता ऐसता बोलेगा, घर दे भी

0: कहण के बुलायो ना, डॉक्टर साहब ने रोकया है, वरजया है, इना बोलना नहीं, आम गल्ला कर दिया, ऐसा ऐसा बोलेगा किते थोड़ा जा निंदिया दी कोई तवा लगण दा देर है, सच जानियो पता नहीं कितो आवाज निकलदी, ओही बंदा उच्ची उच्ची बोलन लग पैंदा है। की कदी साडी जबान परमात्मा नहीं इना उच्चा बोलदी है? रसना संसार लई कूकेगी, रब लई कदी नहीं कूकदी। हां जिदी कूकन लग पे प्रेमा भगती विच, बाबा नानक जी कहिंदे फिर ओदी एक जबान ही केवल नहीं कूकदी, सिर तो पैरां तक जितने ओदे रोम ने हर रोम ही जबान बन के कूकन लग पैंदा। एवे प्रेमा भगती। बाबा जी ने अमृत बाणी विच एक बचन कहा हे जे वेहे, गुरु अर्जुन साहब श्लोक संस्कृति, हे रस गए मधुर प्रै तोयंग, हे जबान हे रसा नू चखण वालिए, तेनू गल्लां चंगियां लगदियां ने, तेनू भोजन प्रसाद पानी चंगे लगदे ने, हे जेबे हे रस गए मधुर प्रै तोयंग सत हतंग, जदों किते सत नाम वाहगुरु दी गल चले इंज लगदा जिवें तेरी मौत हो गई है, तू मूह च है ही नहीं, अंज लगता जिमें तेरी अंदर दी ताकत ही खत्म हो गई। हे जेवे हे रसगे मदर प्रै तोयंग सत हतंग, सत विच तेरी मौत हो गई। परम बादंग, जे परम बादर ते वड्डे तो वड्डा झगड़ा खड़ा करना होवे ते जबान तीली नूं तां कसाणा पैंदा है तां उह अग लांदी है, सिर्फ तू तां अपनी एक निक्की जी तीसी खलाण दी दे रहे ते कई पुश्तां दे आपस विच पवाड़े पा के रख दे नहीं है। ध्यान दिया जे, जे जबान दी शक्ति, जे रसना दी ताकत, जे जेवां दी ताकत एक थोड़ी जी तीसी हलाए ते कई जन्मां दे पवाड़े कई पुश्तां दी आपस विच कतलो गारत तक गल पहुंच जांदी है, जे जबान इन्नी वड्डी दूरी भी पा सकदी है, चेते रखियो इहदे कोल शक्ति है, जे रब रब जपन लग पए ते करोड़ां जन्मां दी दूरी मिटा भी सकदी है, कली दूरी पांदी नहीं ਇਹ ਦੂਰੀ ਮਿਟਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਵੋਂ ਲੱਖ ਹੋ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ, ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਲੱਖ ਜੀਵ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਖ ਦੀਵ ਤੋਂ ਵੀਹ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ, ते उस भी लख जीव विचो एक एक जीव न लख लख वरी जगत दे मालक दा नाम जपया, ते बाबा नानक जी कहिंदे इन्नी कमाई करे ता जगत दे मालक भी तू मिल सकदा, कि इहो जी प्रेमा भगती को कर सकेगा? बाबे नानक जी दा अपना अनुभव है, एक दो जीवो लख हो है, लख होवे लखवीस, लख लख गेड़ा आखियां, एक नाम जगदीश, प्यारिया ए तरह पत पवड़िया चढ़िया होए आकीस, एने रस्ता ए मार्ग प्यारे नू पाउन दा, ते जे अंदर तेरा रुख है ते बाहरों प्रेमा भगती वाले दी रीस करने, फिर सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस, नानक नदरी पाई है। प्रेमा भगती ओदी नदर नाल मिलदी है, ओदी बख्शीश नाल मिलदी है। कूड़ा कूड़ी ठीस, ठीस दा अखरी अर्थ हुंदा गप मारना, कहिंदे ने जे ओदी नदर नाल तेरे कोल प्रेमा भगती नहीं, एवें जमीन ते रेंगण वाले कीड़े, तू आसमान विच उड़न वाले पंछियां दी रीस ना कर। सुन गल्लां आकाश की कीता आई रीस, ओ ता प्रेमा भगती आ जिहड़ी अवस्था तेन दसी, एक दू जीवो लख होए, ए नानक नदरी पाई है, ओदी कृपा नाल मिलदी है। ते जे कृपा तो बिना कूड़ा कूड़ी ठीस, कूड़े बंदे दी कूड़ी गप होवेगी, कूड़े बंदे दा कूड़ होवेगा। मैं बेनती जड़ी कर लगा, सतगुरु ने प्रेमा भगती कीती, उस भगती दी एक मिसाल हजूर ने खोर दिती। दातार कहिंदे ने कि दुध नू चो के लियांदे ने, जिमीदार चोंदा है ग्वाले घरां विच चोंदे ने, जिस बर्तन विच दुध चो के लियांदा उस बर्तन विचों दुध दूजे बर्तन विच पलटिया जांदा है, भांडे विच पलटदे ने। हुण जिस भांडे विच दुध चोया ओदे अंदर दुध ओदे बर्तन दे नाल ओदे कंडियां नाल जरूर लगा है, ते सियाणियां सवाणियां अपने हथ विच लै के पानी ਤੇ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਗਾਲ ਦਰਦ ਜੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਹੰਗਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਲ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟਾ ਸੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੁੱਧ ਨੇ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਦੀ ਤੇਲ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਏਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਦੀ ਮੱਖਣ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਏਗਾ? ਕਦੀ ਘਿਓ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਏਗਾ? ਦੂਜੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁੱਲ ਦਿਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਦੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ 1 ਲੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ 6 ਕਿਲੋ, 6 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਟਵਾ ਲਾਂਗਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੇਵਫਾ ਦੇਖ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੇ, ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਪਵਾ ਲਈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੇਵਫਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਡ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾੜ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਸੇਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਕੈਸੀ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁੱਧ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਤੇ ਪਤੰਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਭਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤੰਗੇ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਦੀਵੇ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ, ਕੀੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵਰਖਾਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਬਰਸਾਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸ਼ਾਇਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵਰਖਾਈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੱਤੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਨੀਂਵ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ? ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ, नीव दै। बाबे नानक ने नीव रखी। हुण अगे ए स्पष्ट होवेगा कि गुरु नानक साहब झड़ी लांदे पए ने गुरु अंगद साहब के नीह रख रहे ने। बचन है लंगर चला गुरु शब्द हर तोट ना आवी खतिया खर्चा दित खसमदी खसमदी दर ते बाबे नानक दी रब दी दिते हुए खर्चे नु गुरु नानक साहब दी जोत गुरु अंगद साहब वंडन लगे ने। खर्चे दित खसमदी आप खैदी खैर दबतिया। हुण देखो शब्द ने खर्चे खर्चन वास्ते दिता बाबे नानक ने खजाना नाल कह दिता आप खैदी आप खाया जे खैर खैर दर ते जेड़े मंगण आउणगे उन्हां दी झोली विच पाया जे। हजूर ने कहा कि लंगर चला गुरु शब्द हर तोट न आवी खतिया खर्चा दित खसमदी आप खैदी खैर दबतिया। इत्थे एक बचन कीता कहन लगे मेरे दाता जी के आप जी उते एनी कृपा भी हुंदी होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिए नूर दी वरखा हो रही है। गुरु अंगद साहब उसे वरखा नू लोकां तक पहुंचा रहे ने क्योंकि गुरु नानक साहब ने उन्हूं अपना अंग बनाया है। होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिए तुद जिथे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। एक बचन आप रोज होर पढ़ दियो बरे हैं दरगह गुरु की कुदरती नूर। हुण वरे है नहीं वरे है दर से वर रहा है वरख रहा है की वरखदा है कुदरती नूर परमात्मा दे घर विचो रुखानियत दे बदल बन के गुरु अंगद साहब उन्हां दी बरसात पै करांदे ने ते जेड़ा आउंदा उन्हूं नाम नल पे देंदे। तांते अंगद अंग संग भयो शायर तीन शब्द सुरत कीनी वरखाई। ते गुरु नानक साहब ने की कीता इनू भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच कह कह लगे प्यारियो के गुरु नानक साहब ने मेहर कीती पारस होवा पारसों गुर उपदेश गुर परचे गुर उपदेश विच रहना है चंदन होवा चंदनों है दीपक ते दीपक प्रगासिया है। हुण धन गुरु अंगद साहब शब्द सुर दी खेड नहीं मरतांदे कैसी वरखा पै करदे ने। भाई पारो वर्गा आउंदा है ते ओ जदों आके पुछदा महाराज हंस और परम हंस की है ते बाबा नानक जी दी जोत गुरु अंगद साहब वरखा करके कहिंदे ने के पारो ते भाई पारो जुलका सी। पारो हंस हुंदे ने जिहड़े दुध पानी नखेड़दे ने ते परम हंस हुंदे ने जिउंदे जिउंदे जी अपने शरीर विचों बदे हो जांदे ते तुर पिया। कहिंदा फिर परम हंस असी ते नहीं बनना। बाबा जी ने कृपा कीती गुरु अंगद साहब दी नदर नाल गुरु अमर सादास दे वेले परम हंस बनिया। ते भाई गुरदास ने अपनी रचना विच क्या कहन लगे पारो जुलका परम हंस पूरे सतगुर कृपा धारी। पूरे गुरु ने मेहर कीती। एक प्रमाण मैं होर दे के अगे चलना के गुरु ने मैले हिरदिया विच नाम दी वरखा कर दिती गुरु अंगद साहब ने। हुण भाई जोत रसोईया है ते भाई गुरदास ने बचन भी कहे कि जोध रसोईया देवता गुर सेवा कर दुत्तर तारी पूरे सतगुरु पै सवारी। जोध रसोईया देवता ए असल सी ब्राह्मण। इस भाई जोध ने इन्नी लंगर भी सेवा कीती कि माता खीवी जी नाल दो सिख होर सन जेड़े सेवा करते सन। एक भाई केदारू केदारा ते दूजा भाई साहब भाई जोध। ए जोध ब्राह्मण सी ए जोध खैरा जट नहीं क्योंकि दो जोध सन। एक बाबे नानक दा सिख सी जिदे तो पौड़ी सुन के बाबा लहणा जी करतारपुर गए ओ खैरा सी खडूर साहब दा रहण वाला। ए भाई जोध ब्राह्मण सी ए बाहरों आया सी। मेरे गुरु अंगद साहब किवें वरखा करदे ने नाम दी। भाई जोध आया इन्हें बाणी सुनी कीर्तन सुनिया मन चाया भी लंगर च सेवा करा। सादे कपड़े पा के माता खीवी नाल सारा दिन भाई जोध ते भाई केदारा लंगर विच रहिंदे सन। ते भाई जोध दे मन विच कदी आ जाणा ते नीवियां जातां वाले भी इत्थे आए क्योंकि ब्राह्मण सी कई जन्मां दा उहदे अंदर ए सी खून ए सी कि मैं उच्ची कुलदा वां। मन चाया फिर एक दिन आया मना जे भांडे मांझ के भी जे इत्थे लंगर विच खौंचे मार के भी लकड़ा पाड़ के सारा दिन धुप्पे चुल्हे सामने बह के भी तेरी मैल ना गई तो मैल जाएगी कितों। कहन लगा अजे भी खौमे की मैल चुकी फिरना मैं ब्राह्मण। उत्थे एक शब्द क्या कहन लगे तू झूठा है। अपने मन नूं कहिंदे तू झूठा है तेनूं कोई खक नहीं सुचा भोजन छके। कल तो बाद जिहड़ा अंदर जात वाला भूत वड़िया इहनूं झूठा भोजन दिता जाए। प्यारे ओ सारे भांडे चुकने पर कुछ कु पतलां चुक के एक पासे रख लैणियां। यह हकीकत है इहनूं अत कथनी ना समझियो। गुरु अंगद साहिब किवें बरखा करदे जदों सारिआं चले जाणा जिहड़ियां पतलां लुका के रखियां होणियां उहदे विच्चों सब्जी भाजी दा किणका मात्र चुण के एक थां ते कट्ठियां करके खा लैणा। माता खीवी जी देखना सारा दिन सेवा करदा लंगर कितों छकदा है। अज देखिया कि जो सारे चले गए दोपहर दे लंगर तो बाद लोग के सारियां पतलां हूंज के आ पिया खाए। माता खीवी जी ने बाबा बुढ़ा साहब नूं कहा कि बाबा जी भाई जोध सारा दिन सेवा करदा पर पंगत विच लंगर नहीं छकदा। नहीं मने गुरु अंगद साहब फिर एक दिन अचनचेत आए इस नूं जे पढ़ना होवे ते पढ़ियो भाई वीर सिंह उहनां दा अष्ट गुरु चमत्कार। आए देखिया कि यह सज्जन पत्तल दे विचो चोके छोटे छोटे किड़के खांदा पे। सतगुरु ने देखिया कहन लगे भाई जोध एक ही कर दे पे। इको दम कंब गए हाथ झाड़ के उठ खलोते कहन लगे की कर रहे सो। कहन लगे दाता अंदर झूठा ते झूठिया नू झूठा ही भोजन चाहिदा है। अंदर झूठा है तुसी पंगत विच क्यों नहीं बैठते। कहिंदे ने अगे अंदर जात वाला भूत बैठा जो नाल कोई बहिंदा है ते कहिंदा मैं ब्राह्मण मैं उच्चा। कहन लगे इनू रहण दिओ नीवा इनू उदो समझ लगेगी जिन्नी देर तक पत्तलां विच नहीं रहिंदा ते लंगर दे भांडिआं विच नहीं रहिंदा। सच्चे पातशाह देख के त्रुट पै माता खीवी जी कोल आए सिर ते हथ रख के कहन लगे भाई जोध तू सच्यार है तू झूठा नहीं तू सच्यार है। अज तो बाद लंगर विच बैठ के भोजन छकना है। जदों कहिंदे ने इन्ना शब्द सिर ते हथ रख के कहा सारे विद्वान ये मानते ने कि गुरु अंगद साहब दे खत्थां विचों इहो जी मानो वरखा निकली कि भाई जोध देवता बन गया सिर तो पैरा तक नाम दे नाल भिज गया। इत्थे फिर भाई साहब ने कहा जोध रसोईया देवता गुर सेवा कर दुत्तर सारी ते अखीरली तो के कहन लगे पूरे सतगुर पैर सवारी। पूरे गुरु ने उहदे सिर ते मेहर भरिया हथ रख दिता किरपा कर दिती। अज पंगत विच बैठ के लंगर छकन लगे किसे पुछ लिया कि अज इत्थे क्यों बैठे। कहन लगे झूठ वाला भूत निकल गया है हुण अंदर गुरु बैठा है ते गुरु नूं अंदर दे चौंके विच बिठा के सच्चा भोजन ही देईदा। अंदर गुरु है हुण ओ गुरु अंगद साहिब समुंदर बन गए जिहड़ा उहनां कोल आया उहनां बरखा कीती। तां ते अंगद अंग संग भयो शायर तिन शब्द सुरत कीनी वरखाई। हुण तीजे पातशाह ने गुर अमरदास की अकत कथा है। गुरु अमरदास जी दी भट्ट कीर्त जी कहिंदे कथा बयान तो रहत है वो अकत कथा है। गुरु अमरदास की अकत कथा है ते किवें का अकत है जी। उन्हां नाल बचन क्या एक जी ही साडी जीव एक है कछ कही ना जाई। की बयान करांगे गुरु अंगद साहिब दी कथा अकत है असी नहीं बयान कर सकते क्योंकि भट्ट पिछे भी कह के आए ने कि दाता जी कन खर बूंद बसो रुमावल कुसम बसंत गणंत।
1: रिपीट होवे संस्कार बनदे जान उना दे इकट्ठ तो जिस अवस्था दा जन्म हुंदा नूं कहिंदे ने सुभाव। ओ फल है बीज नूं बोण तो रोक सकदे सी बूटे नूं भी पुटिया जा सकदा पर हुण फल बन गए। फल दा रूप बदलना औखा फल बन गए। चलो जमीन ते बूटा लाया फली बहुत होया फल कोई खावेगा पर जीवन दी धरती दे जो कर्म दा बीज बोया और फली बहुत होया आप बीज आपे ही खाया आप ही खाना पैंदा कोई दूजा नहीं खांदा। मेरा बोया मैं खाना मेरी औलाद नहीं खांदी। पति दा बोया पति खांदा है, पत्नी दा बोया पत्नी खांदी। आप बीज आपे ही खाए, जमीन ते बूटा किसे ने लाया है, फल कोई खांदा पे है। जीवन दे ते जिसने बीजे है, आप बीज आपे ही खाए। नियम प्रभु ने ऐसा बनाया है, कर्म बीज दी तरह है, संस्कार बूटे दी तरह है, स्वभाव फल दी तरह। बीज नो बोन तो रोकया जा सकता है, कर्म करन तो अपने आप नो रोकया जा सकता है। कोई भी चलो बो दिता है, बूटा बन गया, पुटिया जा सकता है, कटिया जा सकता है, फल बन गए। हुण इहदा कोई रूप रंग मिटाना औखा है, ते खाना पएगा, फल हो गया। फल नूं सुभाव कहिंदे ने। मैं अर्ज करां, मनुख जद पहले एक कर्म करदा है, शुभ चाहे अशुभ, मनुख दे कर्म बदले जा सकदे। अगर शुभ कर्म करदा पिया, दो चार दिन दी किसे दी कुसंगत होई, ये शुभ तो अशुभ करन लग पेगा, कर्म बदले जा सकदे। जिस धरती दे च मैं बीज बोना चाहना, मैं वो नहीं बोंदा, मैं होर बोना चाहना, कर्म बदले जा सकदे। संस्कार भी बदले जा सकदे ने, कीता होया कर्म संस्कार बनदा है, जो मैं मन करके बोले है अंदर लिखे आ गया है, जो मैं मन करके कीता है अंदर लिखे आ गया, वो लिखे आ गया है, संस्कार है। जो कीता है एक कर्म है, जो अंदर लिखे आ गया वो संस्कार है। अब दी ग्यातली अर्ज करा, संस्कार किसदा बनदा है, अंदर केड़ा कर्म लिखिया जांदा है, जिस कर्म नू मन नाल करिए। तो ऐसा हुंदा है, तन कोई कृत कर रहा है, उस विच मन नहीं है, संस्कार नहीं बनेगा। पर मन विचार कर रहा है, सोच रहा है, मानसिक कर्म चल रहा है, पावे तन कृत नहीं भी कर रहा, तां भी संस्कार बनेगा। थोड़ा जहा ध्यान पूर्वक सुनना, संस्कार मानसिक कर्म नाल बनता है। तन कोई कृत कर रहे है, उस विच मन शामिल है, संस्कार बनेगा। तन नहीं शामिल, मन कर रहे है, सोच रहे है, चिंतन कर रहे है, विचार कर रहे है, संस्कार बनेंगे। संस्कार मानसिक कर्म दे बनते हैं, उस मानसिक कर्म दे च भावे तन शामिल होवे भावे ना शामिल होवे। जब तन नाल शामिल होंदा है तो कर्म कृत बन जांदा है। लेकिन तन शामिल नहीं होया तो कर्म कर्म है, कृत नहीं बनया, कृत नहीं बनया। समाज कानून मनुख दी कृत नूं वेखदी है, मानसिक कर्म नूं नहीं, देख भी नहीं सकदी। तुसी इत्थे सोचदे की पयो, मैनूं की पता, मैं इत्थे स्टेज ते बैठा या गुरुद्वारे बैठे होया की सोच रहा सी, तुहानूं की पता। मानसिक कर्म तक समाज दी कानून दी पहुंच नहीं है, कृत तक पहुंच है। जद ओ मानसिक कर्म जो विचार दे रूप च आउंदा है, जद तन ते कृत दे रूप च प्रगट आउंदा है, ओ समाज नूं दिखाई देंदा है करदा की पिया, इहदी कृत की। ऐसा भी हो सकदा है, कृत बड़ी चंगी कर रहा है, उस विच मन नहीं है, मन इनकारी है, मन इनकारी है, फिर चंगी कृत क्यों कर रहा है? समाज लिए कर रहा है, समाज चंगा चंगा आखेगा, लोकी चंगा चंगा।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवी जे सोची लहवार चुपै चुप न होवी जे लाय रहां लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियान पालक होए ता एक न चले नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुटे पाल हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न केहा जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है हुक्म

कौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिनसूत जे को बुझै होवै सच्यार तौलै उपर केता पार धरती होर परै होर होर तिस्ते पार तलै कवन जोर।

के रूप न कथने जाए, ना ओ मरै ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथे भगत वसै के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसे नंकार, कर कर वेख नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर भंड, जे को कथे

आप श्रीमुख वाग्पाद सही दसवीं छपे चंतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जाति हर पात नहीं जाय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश संतोष कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जाय तिर भवन में सुर नार सुर नेत नेत मंत्र कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजय नमस्तंग अभंजय नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये।

तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाय नमस्तंग अभाय नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संयोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाशय नमस्तंग निराशय नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्ते अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अवेशे नमस्तंग नितामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अवेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व दंदे नमो सत बंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व द्याले नमो सर्व पाले चात्री चांतौ प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अभेक है अनाम है अकाम है अदय है अभय है अजीत है अभीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अभर्ण है अगंज है अभंज है अजूज है अजंज है अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लभ है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद नमो सर्व माने समस्ते निदाने नमो देव देवे अभे की अभेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ति प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र पाने नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोक माता वेखी अवर्मी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण कुकुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्व प्रनासी अनूपे अरूपे सुमस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा भिर्द करदा अधो उर्द अर्दंग अगग उग हरता परंग परम परमेश्वरंग प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारंग अछेति अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्त तामंग तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियंग पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्तंग निनाथे नमस्तंग परमाते नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अकाले नमस्तंग अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साए नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्व दिसंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग परसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचांद तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता।

सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आदि उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अर न पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तत्र दिशा विशा हो फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान ताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेद हरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म ही चक्र बकर फिरे चतुर चक मान ही पुरती लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सब जय थाप परम रूप पुनीत मुहूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्त्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अभूत अलख पे अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्व गंजन दुष्ट पंजन मुकुदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेयन पे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवि वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनाथ।

कालांकन अनुभूत अंग अभावंगत मित पार गुण गण उदार मुन गण गुरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष आदिष्टे तरम सर्वां वर्णांडिय अंडंड भांडिय चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे व्यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अदीर्षय अदृश्य अकृषय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभिज वेश के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभिज लोक के आदित सुख के अवधूत वर्ण के बेपूत कर्ण के राजम प्रवाह के धर्मंग तुजा है के आशुक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दानी है के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाव के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिया के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पाने के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम सलीख मुदामे गरीब उल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीज उल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीम रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीम उल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्वाह स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाथ स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिका में त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथुल परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंद है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपण चंतो प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरकनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमित अमेक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਲ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇ ਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਨੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪ੍ਰਭੂਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਅਨੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣ ਗਨ ਮੁਦਾਮ ਹਰ ਬਰ ਅਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਭੰਜ ਅਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮਨ ਮਨ ਸੁਨਾਮ ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ ਅਨਭਉ ਅਨਾਸ ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਣ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਨ ਮੁਦਾਮ ਅਨਛਿਜ ਅੰਗ ਆਸਾਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਪਾਰ ਗਤ ਮਿਤ ਉਦਾਰ ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨਭਉ ਅਨਾਸ ਤ੍ਰਿਤ ਤਰ ਤੁਰਾਸ ਆ ਜਾਨ ਵਾ ਏ ਕੈ ਸਦਾ ਓਂਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਕਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਅਨਛ ਜੁਗਾਤ ਅਜ ਜਨਾਬਾਤ ਅਨਛੰਜ ਗਾਤ ਅਨਰੰਜ ਬਾਤ ਅਨਟੁਣ ਪੰਡਾਰ ਅਨਠੰਡ ਅਪਾਰ ਆ ਡੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ ਅਨ ਬਰਨ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਮੰਤ ਹਰ ਬੋਲ ਮਨਾ ਸ਼ੰਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨਾਲੇ ਹਰ ਕਾਲੇ ਹੈ ਕਲਖੰਡਨ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਡਨ ਹੈ ਜਗਤੇਸੁਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੈ ਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਵਾਰਨ ਹੈ ਧ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧਰਨ ਹੈ ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਜਗ ਜਾਨੀ ਹੈ ਸਰਬੰਕਾਰ ਹੈ ਸਰਬੰਕਾਰ ਹੈ ਸਰਵਾਸੀ ਹੈ ਸਰਵਨਾਸੀ ਹੈ ਕਰਨਾਕਰ ਹੈ ਬਿਸਵੰਬਰ ਹੈ ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਸ ਹੈ ਕਲਖੰਡਸ ਹੈ ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰਨਾਕਰ ਹੈ ਅਜਪਾਜਪ ਹੈ ਅਤਪਾਤਵ ਹੈ ਅਗਰਤਾਕ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਕਰਨਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਗਰਤਾਕ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਤਰਨੀ ਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਜਬਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਰਨਾਇਕ ਹੈ ਕਲਗਾਇਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ ਹੈ ਕਰਨਾਲਯ ਹੈ ਨਿਰਮਨਾਇਕ ਹੈ ਸਰੂਪਾਇਕ ਹੈ ਭਵ ਪੰਜਨ ਹੈ ਅਰਗੰਜਨ ਹੈ ਰਵਤਾਪਨ ਹੈ ਜਪ ਜਾਪਨ ਹੈ ਅਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਵਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਤਾਕਰ ਹੈ ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ ਸਰਵਾਤਮ ਹੈ ਆਤਮ ਬਸ ਹੈ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ ਪੰਜਾਂਗ ਪੁਰਾ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸੂਰ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿੰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਸੰਗਤਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਪਰੰਗ ਤਤੰਗ ਅਤੰਗ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ ਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ ਨਮੋ ਜੁਦ ਜੁਦੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਪੋਜ ਪੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਕਲੇ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਅਨਾਦ ਭੂਤੇ ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਅਕਲੰਕਾਰ ਲੰਕੇ ਨਮੋ ਆਸੇ ਆਸੇ ਨਮੋ ਬਾਂਗ ਬੰਕੇ ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਅਕਾਮੇ ਏਕ ਅਸ਼੍ਰੀ ਛੰਦ ਅਜੈ ਅਲੈ ਅਭੈ ਅਭੈ ਅਭੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਅਕਾਸ ਅਗੰਜ ਭੰਜ ਅਲਖ ਅਪਖ ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ ਅਲੇਖ ਅਭੇਖ ਅਨਾਮ ਅਕਾਮ ਅਗਾ ਅਡਾ ਅਨਾਥੇ ਪਰਮਾਥੇ ਅਜੂਨੀ ਅਮੋਨੀ ਨ ਰਾਗੇ ਨ ਰੰਗੇ ਨ ਰੂਪੇ ਨ ਰੇਖੇ ਅਕਰਮੰਗ ਅਭਰਮੰਗ ਅਗਜੇ ਅਲੇਖੇ ਪੁਜਾਂਗ ਪ੍ਰਜਾ ਛੰਦ ਨਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸੁਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਅਗੰਜਨ ਅਨਾਮੇ ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸੇ ਨਿਰਕਾਮੰਗ ਬਭੂਤੇ ਸੁਮਸਤੰਗ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸੋ ਧਰਮੰਗ ਪ੍ਰਭੂਤੇ ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਕਰੀਮਲ ਕੁਰੰਦਾ ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਾਇਬ ਬਭੂਤੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ ਹਰਿਅੰਗ ਕਰਿਅੰਗ ਕਰੀਮ ਰਹੀਮੇ ਚਤਰ ਚਕਰਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੁਯੰਬੰ ਸੁਮੰਗ ਸਰਵਦਾ ਸਰਵਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗ ਭੂਤੇ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗ ਅੰਗ ਭੂਤੇ
तौ प्रसाद सोइए श्राव समूह सिदान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार दन सुध सुधायक सन समूह अवनिवृति के सारी देश को देख रियो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कूद पहुन के गौन को जात निवारे पारी प्रजान को पूर्व बलिवर्ण्या सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे अंत को नांगे बाय बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंस दहे राज हजारे ओत पवेख पवान के पुब कौन गने नी जात विचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जतार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है सुध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जान।

0: श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार इसार की तार बिछैया। तोर देश बुलंद बवासन माते के जान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया। साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया। दानव देव फिनन निशाचर पूत पवेख पवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बार जय तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे। सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सवै अब लोग जपेंगे। मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वम्बर साज भरेंगे। ब्रह्म हेश्वर विष्णु सची पत अंत बसे जमफात भरेंगे। जे नर श्री पत के प्रस है भगते नर फेर न दे तरेंगे। कहाँ भयो जो दो लोचन मुंद कै बैठ रहो भगत ध्यान लगायो। नहात फिरयो लिए सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गो आयो। बास कियो बखियान सु बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो। साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो। कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो। को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो। कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो। आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परवारा। सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिया। सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा। और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ। जो बर चाहो सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिय चुन चुन सत्र हमारे मारिय। आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास नवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रच्छा। राख

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जमन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचान, कट कट के पट पट की जाने, जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, देते बदन

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा, अंडज जे राज से तज कीनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी। कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्टि दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव। आवरक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, दिन के दुष्ट दुख है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

अंतर आत्मा समाले आप छड सदा रहे परने गुरबिन अवर न जाने कोए। कह नानक सुनो संतो सो सिख सरमुख होए। जे को गुरु तेरे मुख होवे दिल सतगुरु।

0: गुरु रूप सात संगत जीओ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। HMV पिछले 50 सालों तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पाठ ते शब्द रिकॉर्डां कैसटां राही आप जी की सेवा विच पेश कर रहा है। भाई साहब तलोचन सिंह रागी की आवाज विच 1966 तो हुण तक आप जी पाठ सुखमणी साहब नितनेम दीआं बाणियां अरदास हुकम ते कई शब्द सुन चुके हो। हुण संगतां दी मंग नूं मुख रखदिआं होइआं नितनेम दीआं सारीआं बाणियां जो पहले अलग अलग सन इको कैसेट CD विच पेश कीतीआं जा रहीआं हन। सवेर दीआं बाणियां जपजी साहब, जाप साहब, त्वै प्रसाद सोईए, चौपई ते आनंद साहब, संध्या वेले रहराज साहब, रात सौण वेले कीर्तन सुहेला। छेती ही भाई साहब दी आवाज विच रिकॉर्ड कीते होए सारे शब्द इकट्ठे कैसेट CD विच आप जी दी नज़र करांगे। उस तो बाद आसा जी दी वार दे कीर्तन दी कैसेट भी छेती ही आ रही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: परम सम्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीर्त साहिब जी दी रचना तो उच्चारण कीता होया गुरु रामदास कृपालू जी दी सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण कीता है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहिब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम नूं जाणिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक साहिब जी दी कीती कोई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहिब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहिब जी ने आए हुए जग्यासुआ उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिते। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। कहिंदे ने इन्हां तिन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहिब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडन वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणां विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन। साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो कृपालता फिर उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहिब।

वाहेगुरु जी दी भगति प्रेमा भगति तन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहेगुरु जी दी भगति कीती। आरंभता है प्रेमा भगति तो तन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिमें असी बाणी विचों तन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन किया। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने यह बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुलां जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नूं तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बलदियां ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका, जे पैरां नाल चलदिया होया थक जावा, सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खड़िया नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की विगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहेगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक ले। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द ए भी वरतने हां कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हां, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख, परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती हुई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुंना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुभाई। हुण कमल दा फुल जिहड़ा है ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा है ओ आसमान विच है, दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद
कमल विच परमात्मा ने एक एको

0: नानक कहूं नसी जई बिन नामे पत जाए अष्टपदी।
1: दस बसूले पाछे पावे,
0: एक बस्त कारण बिखो टकवावे,
1: एक भीना दे दस पी हिर ले,
0: दो मूड़ा को कहां करे,
1: जिस ठाकुर से हो नाही चारा,
0: ठाको की जय सद नमस्कार,
1: जाके मन लगा प्रमीठा,
0: सर्व सुखता हु मन बुठा,
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया,
0: सर्व थोक नानक चिन पाया,
1: अगंत शाह अपनी दे रास,
0: आत पीत बरते अनंत उलास,
1: अपनी ईमान कश बहो शाह हो ले,
0: अज्ञानी मन रोस करे,
1: अपनी प्रतीत आप ही गोवे,
0: और उसका विश्वास न हो गए,
1: बस्ते सागर रख है,
0: की आज्ञा मन है मथ,
1: उसके चौगुण करे निहाल,
0: नानक साहिब सदा दयाल,
1: नानक भांत माया के हित,
0: सरबर होवत जान अनेत,
1: बिरख की छाया से रंग लावे,
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावे,
1: जो दी सह सो चालन हार,
0: लपट रहो ते अंधे अंधार,
1: घटाऊ से जो लावे नेह,
0: ताको हाथ न आवे के,
1: मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई,
0: कर कृपा नानक आप ले लाई,
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सुपाया,
0: मिथ्या होमे ममता माया,
1: मिथ्या राज जोगन धन माल,
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल,
1: मिथ्या हस्ती असु वस्त्रा,
0: मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता,
1: मिथ्या ध्रो मोह अभिमान,
0: मिथ्या आप से ऊपर कर्त गुमान,
1: सिर भक्त साध की शरण,
0: नानक जप जप जीवे हर के चरण,
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है,
0: मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरे,
1: मिथ्या नेत्र पेखत पात्रिया रूपाद,
0: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद,
1: मिथ्या जन्म पर विकार कुता वहे,
0: मिथ्या मन पर लोभ लबावे,
1: मिथ्या तन ही पर उपकारा,
0: मिथ्या बास लेत विकारा,
1: बेबूजे मिथ्या सब भये,
0: सफल दे नानक हर हर नाम लये,
1: वृत्ति साक्त की आरजा,
0: साच बिना कह हो सुचा,
1: बिरथा नाम बिना तर अंध,
0: मुखे आवतता कह दुर्गंध,
1: बिर सिमरन दिन रैन बिरथा विहाये,
0: एक बिना ज्यों खेती जाए,
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम,
0: कृपण के निरार्थ दाम,
1: धन तन तेज अन दे कट बस्यो हर नाउ,
0: नानक ताके बल बल जाओ,
1: रहते अवर कश अवर कमावत,
0: मन ही प्रीत मुखों गंड लावत,
1: जानन हार प्रभु प्रवीन,
0: बाहर पीक न काहू भीन,
1: अवर उपदेश है आप न करे,
0: आवत जावत जन में मरे,
1: जिसके अंतर बसे प्रभाव,
0: जिसकी सीख तरह संसार,
1: जो तुम भाने तिन प्रभ जाता,
0: नानक निजन चरण पराता,
1: करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने,
0: अपना किया आपे मन,
1: आप करत नबेरा,
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा,
1: पाप से अनप सकल ते रहत,
0: सब कछ जाने या तुमकी राहत,
1: जिस भावे तिस लए लड़ लाए,
0: शांत अनंतर रहा समाए,
1: सो सेवक जिस कृपा करी,
0: निमक निमक जप

0: संत का दुखी सदा सहकाई है।
1: संत का दुखी ना मरे ना जिवाई है।
0: संत के दुखी की पूजा ना आशा।
1: संत का दुखी उठ चले निराशा।
0: संत के दुख ना त्रिष्ट है कोई।
1: जैसा भाव है तैसा कोई होए।
0: भया कीर्त न मिटे कोई।
1: नानक जाने सच्चा सोए।
0: सब कर तिसकी हो करने हार।
1: सदा सत को नमस्कार।
0: रबी उसत करो दिन रात।
1: तिसे त्याहो सास गिरा।
0: सब कछ वर्ते तिसका किया।
1: जैसा करे तैसा को थिया।
0: अपना खेला करने हार।
1: दूसर कौन कहे विचार।
0: जिसनो कृपा करे तिस अपना नाम दे।
1: वडपागी नानक जन से श्लोक।
0: तज हो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राय।
1: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम को जाए। अष्टपदी
0: मनुख की टेक बिरथी सब जान।
1: जीवन को एक है भगवान।
0: जिसके दिया रह अगाही।
1: और न तृष्णा लागे आए।
0: मारे रखे एको आप।
1: नानक कृष्णा ही हाथ।
0: जिसका हुक्म भू सुख होए।
1: जिसका नाम रख कंठ परोए।
0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए।
1: नानक विघ्न लागे कोए।
0: उसत मन में कर निरंकार।
1: मन मेरे सत व्यवहार।
0: निर्मल रसना अमृत पियो।
1: सदा सहेला कर ले जियो।
0: नैनो पेट ठाकुर का रंग।
1: सदा संग बिन सह सब संग।
0: चरण चलो मार्ग गोविंद।
1: मिटे पाप जपिए हर बिंद।
0: हर हर कर्म श्रवण हर कथा।
1: आदर ज्ञान नानक उज्जल मथा।
0: बड़ भागी ते जन जग माहे।
1: सदा सदा हर के गुण गाहे।
0: राम नाम जो करे विचार।
1: चेतन मंतगनि संसार।
0: मन तन मुख बोले हर मुखी।
1: सदा सदा जानो ते सुखी।
0: एको एक एक पछाने।
1: तुत कियो सोजी जाने।
0: नाम संग जिसका मन मानिया।
1: नानक तने निरंजन जाने।
0: गुर प्रसाद अपने आप सुजय।
1: जिसकी जानो तृष्णा बुझे।
0: साध संग हर हर जस कहत।
1: सर्व रोग त्यो हर जन रहत।
0: आन दिन कीर्तन केवल बखयान।
1: मैं सोई निर्वाण।
0: एक ऊपर जिस जन की आशा।
1: जिसकी कटिए जन की फसा।
0: पार ब्रह्म की जिस मन भूख।
1: नानक प्रसन्न लागे दुख।
0: जिसको हर ब्रह्म मन चित आवे।
1: सो संत सोहेला नहीं जुलावे।
0: जिस प्रभु अपना कृपा करे।
1: सो सेवक को किसते दरे।
0: जैसा सत ऐसा दृष्ट आया।
1: अपने कार्य में आप समाया।
0: सोधत सोधत सोधत सीजया।
1: प्रसाद तत् सब पूजया।
0: जब देखो तब सब शमूल।
1: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल।
0: नह किस जन मैं नह किस मरे।
1: अपने चलते आप ही करे।
0: आपन जावन दृष्ट अन दृष्ट।
1: आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट।
0: आपे आप सगल में आप।
1: अनक युग त्रच था व्यथा।
0: अविनाशी ना ही किस खंड।
1: धारण धार रहे हो ब्रह्मांड।
0: लख पे पुरख प्रताप।
1: आप जपाए तो नानक जाप।
0: दिन प्रभ जाता सो सो पावंत।
1: सगल संसार उदर तन मंत।
0: प्रभ के सेवक सगल उदारण।
1: प्रभ के सेवक दुख विसारण।
0: आपे मेल लय कृपाल।
1: गुर का शब्द जप भय निहाल।
0: उनकी सेवा सो ही लागे।
1: जिसनो कृपा करे बट भागे।
0: नाम जपत पावे विश्राम।
1: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान।
0: जो किस करे सो प्रभ के रंग।
1: सदा सदा बसे हर संग।
0: सुपाई हो वैसो हो ही।
1: करने हार पछाने सोए।
0: आपका किया जन मीठ लगाना।
1: जैसा सा तैसा दृष्टाना।
0: जिसकी उपजे तिस माही समाये।
1: सुख निदान उन्हों बने।

0: अष्टपदी
1: टूटी गांडन हर गोपाल
0: सर्वजियां आपे पतपाल
1: सगल की चिंता जिस मन माहे
0: इसदे व्रता कोई नाहे
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अवनासी प्रभ आपे आप
1: अपन किया कछु न होए
0: जिसो प्राणी लोचे कोई
1: जिस बिन नाही तेरे किस काम
0: रत नानक जापे हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह
0: रब की जोत सगल कट सो है
1: धनवंता होए क्या को भर पै
0: सब कुछ किसका दिया धर पै
1: हाथ सूरा जे को कहावे
0: रब की कला बिना कहता वे
1: देखो होए वह दातार
0: इस दिन हार जाने गा वार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग
0: नानक सोजन सदाया रोग
1: ज्यो मंदिर को थमे थमन
0: ज्यो गुर का शब्द मने असथमन
1: ज्यो पाखान नाम चढ़त रह
0: प्राणी गुर चरण रक्त निस्तर
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश
0: गुर दर्शन देख मन होए विकास
1: ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे
0: ज्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे
1: जिन संतन की बांछो धूर
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख का हे बिरलाई है
0: गुर बिलखे का लिखिया पाई है
1: दुख सुख प्रभ देव नहार
0: अवर त्याग दूत सह चितार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: लाहे फिरे अजान
1: कौन बसते आई तेरे संग
0: डॉक्टर रहो रस लोभी पतंग
1: राम नाम जब हृदय माही
0: नानक पद से थी कर जाहे
1: जिस वक्र को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: आज मान ले हो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तो
1: लाद खेप संता संग चाल
0: अवर त्याग बिखिया जंजाल
1: धन धन कह सब कोई
0: मुखो जलहर दरगह सोए
1: यह व्यापार बिरला व्यापार है
0: नानक ताकै सतबर हार है
1: चरण साध के धोए धोए पियो
0: अर्प साध को अपना जियो
1: साध की धूर करो स्नान
0: साध ऊपर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा वट भागी पाई है
0: साध संग हर कीर्तन गाई है
1: अंत बेगन ते साधु राख है
0: अर्गुन गाय अमृत रस चख है
1: ओट गई संत हंदर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: मृतक को जी वालन हार
0: भूखे कौ देव ते आधार
1: सर्व निधान जा की दृष्टि माहे
0: गुरब लिखे का लहना पाए
1: सब किस तिसका करना जोग
0: जिस बिन दूसर हवा न होग
1: जप जन सदा सदा दिन रैणी
0: सब ती उज निर्मल ए करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया
1: जाकै मन गुर की प्रतीत
0: जन आवे हर प्रभु चीत
1: भगत भगत सुनिया तेह लोए
0: जाकै हृदय एको होए
1: सच करनी सत्ता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत
1: साची दृष्ट साचा आकार
0: सच वर तैसा चापा सार
1: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
0: नानक सोजन सच समाता श्लोक
1: रूप नारेख।

0: सिमर सुख पावो
1: बाल कलेश तन माहे मिटावो
0: सिमरो जासब संबर एक
1: नाम जपत गणित अनेक
0: हे प्राण सिमर।

0: सिमरन कबहू का प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे
1: प्रभु कै सिमरन कबहू न छूरे
0: प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी
1: प्रभु कै सिमरन सहज समानी
0: प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन
1: प्रभु कै सिमरन कमल विलासन
0: प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार
1: प्रभु सिमरन अंतर पार
0: से सिमरे जिन आप सिमराए
1: नानक ताके नानक
2: जन जिन का प्रभु मैं
1: नानक तेंजन सन्नी पया
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए
1: हर सिमरन लग वेद पाए
0: हर सिमरन पै

0: ज्ञान ज्ञान को आप प्रभु दीना
1: हर जन के ओट सताड़ी
0: हर प्रताप जनावर न जाने
1: पोत पोत जन हर रस राते
0: सुन समाज नाम रस राते
1: आठ पहर जन हर हर जपे
0: हर का

0: चेत प्राणी
1: तू
0: साज सवार सी गारिया
1: आप
0: व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पया ऊपर साख सैन
1: यो
0: निर्गुण गुण कशु न बुझे
1: हे
0: प्रसाद तर ऊपर सुख बस है
1: हे
0: प्रसाद पी वह शीत जला
1: सुखदाई पवन पार
0: हे प्रसाद भोग है सब रसा
1: सामग्री संग साथ बसा
0: दीने हस्पाव कर नेत्र रसना
1: इसे त्याग कर संग रचना
0: ऐसे दुख मूड अंध व्यापे
1: नानक काट लियो प्रयासे
0: आद अंत जो रखन हार।

0: जाता
1: नानक कौन जन जन पराता
0: करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने
1: अपना किया आपे जाने
0: आपे आप करत न बेरा
1: किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा
0: पाव स्याणप सगल ते रहत
1: सब जाने आत्म की रहत
0: जिस पावे तिस

0: जय प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे
1: सागर को रख मन माहे
0: जय प्रसाद सुगंधित तन लाभ है
1: जिसको सिमरत परम गत पावे
0: जय प्रसाद बस है सुख मंदिर
1: जिसे प्याए ससाम अंदर
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पैर सिमरो
0: जय प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा ध्याए रावण भोग
0: जय प्रसाद पाठ पटंबर हडाव है
1: जिसे त्याग का त्यावन
0: जय प्रसाद सुख सेज सोई जय जय प्रसाद तुझ सब को माने जय प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म
0: प्रभु जी जपत दरगह मान पाव है
1: जय
0: प्रसाद आरोग कंचन देही
1: जय
0: प्रसाद तेरा ओला रहत
1: मान सुख पावे
0: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके जय प्रसाद तुझ को ना पहुँचे
1: मन साथ साथ सिमरो प्रभु
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह
1: नानक ताकी भगत करे
0: जय प्रसाद अभूखण बहरी जय
1: मानस सिमरत को आलस की जय
0: जय प्रसाद असभ हस्त असवारी
1: मानस प्रभु को कबहु ना सारी
0: जय प्रसाद बाग मिलख तना
1: राख प्रोय प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मन बनत बनाई
1: उठ बैठ तसे ध्याई
0: सहे ध्याए जो एक अलख है
1: नानक तेरी रखे
0: जय प्रसाद करहे पुन बहुदान
1: मन आठ पैर कर दिशा ध्यान
0: जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी
1: प्रभु को साथ साथ तारी
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: प्रभु सिमरो सदा रूप
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात
1: प्रभु सिमर सदा रात
0: जय प्रसाद तेरी पत रहे
1: गुर प्रसाद नानक जस रहे
0: जय प्रसाद सुनहे कर्ण नाद
1: जय प्रसाद पेखे बसनाद
0: जय प्रसाद बोलहे अमृत रसना
1: जय प्रसाद सुख सहजे बसना
0: जय प्रसाद हास्त कर चल है
1: जय प्रसाद संपूर्ण पड़े
0: जय प्रसाद परम गत पाव है
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे
0: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लाग हो
1: प्रसाद नानक मन जागो
0: जय प्रसाद तू प्रकट

0: सार के संग मुख उज्जवल होता,
1: सार संग मन सलीक होता,
0: सार के संग मिटे अभिमान,
1: सार के संग प्रगटे सो ज्ञान,
0: सार के संग बुझे प्रभ नेरा,
1: सार संग सब होत मेरा,
0: सार के संग पाए नाम रतन,
1: सार के संग ऊपर जतन,
0: सार की महिमा बरने कान प्राणी,
1: नानक सार की शोभा करम है समानी,
0: सार के संग अगोचर मिले,
1: सार के संग सदा पर मिले,
0: सार के संग आवे बस पंचा,
1: सार संग अमृत रस पंचा,
0: सार संग होए सब की रेना,
1: सार के संग मनोहर रेना,
0: सार के संग न कथु तावे,
1: सार संग अस्तित्व मन पावे,
0: सार के संग माया ते पिन,
1: सार संग नानक रस ऊपर संग,
0: सार संग दस मन समीत,
1: साधु के संग महाप्रणीत,
0: सार संग के स्यों नहीं बैर,
1: सार के संग न बिगड़ा पैर,
0: सार के संग नहीं को मंदा,
1: सार संग जाने परमानंदा,
0: सार के

0: अनेक
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दुख
0: जैसे सूर सब को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज राम को लागे दुर पमान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: गंगा को खोदे को चंदन एक
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गनाओ
0: नानक जो पाव का सहज स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे नैन न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए परगास ब्रह्म ज्ञानी के भीतर सतर समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
0: मन अपने है सबसे नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पै
0: नानक
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: ब्रह्म ज्ञानी जीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया
0: ब्रह्म ज्ञानी से कुछ बुरा ना पाया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी रे साथ संबंधा
1: ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला
0: ब्रह्म ज्ञानी
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उदार
0: ब्रह्म ज्ञानी जपे सर्व संसार।

0: राम ज्ञानी के मन परमानंद
1: राम ज्ञानी के मन सदानंद
0: राम ज्ञानी सुख से जनवास
1: राम ज्ञानी का नहीं विनाश
0: राम ज्ञानी ब्रह्म का वेता
1: राम ज्ञानी एक संगीता
0: राम ज्ञानी के हुए अचिंत
1: राम ज्ञानी का निर्मल मंत्र
0: राम ज्ञानी जस करे प्रव्याप
1: राम ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: राम ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये
1: राम ज्ञानी को बल बल जाइए
0: राम ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक राम ज्ञानी आप परमेश्वर
0: राम ज्ञानी की

0: जाय अध अखर
1: राम ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: राम ज्ञानी की कीमत कौन बखाने
1: राम ज्ञानी की गत राम ज्ञानी जाने
0: राम ज्ञानी का अंत न पार
2: राम ज्ञानी को सदा नाम सार
0: राम ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता
2: राम ज्ञानी सजीव नहीं मरता
0: राम ज्ञानी मुक्त जगत जी का दाता
2: राम ज्ञानी पूर्ण पुरुष पिता
0: राम ज्ञानी अनाथ का नाथ
2: राम ज्ञानी का सर्व ऊपर
0: राम ज्ञानी का सगले आकार।

0: रोकते रहते
1: नानक को डरे को ऐसा परस
0: सुनो सो जिस ऊपर सो परसान
1: जिसन की माया ते होए
0: कर्म कार्त हो वैने कर्म
1: देश वैसनों का निर्मल कर्म
0: काहु फल की इच्छा नहीं वाचे
1: केवल भक्त की संसंग राचे
0: अंताने अंतर सिमरन गोपाल
1: सब ऊपर हो कर पाल
0: दृढ़ अवरह नाम जपावे
1: नानक हो वैसो परम गत पावे
0: अवती भगवंत भक्त का रंग
1: सगल के आगे दुष्ट का संग
0: अंते बिनसे सगला परम
1: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: साध संग पा

0: के चरण हृदय बसावे,
1: नानक ऐसा भगवंती भगवंत को पावे।
0: वो पंडित जो मन पर बुद्ध,
1: राम नाम आत्म में सोवे,
0: राम नाम सार रस पीवे,
1: उस पंडित के उपदेश जग जिए।
0: हर की कथा हृदय बसावे,
1: सो पंडित में जो नावे,
0: वेद प्राण स्मृत बुझे मूल,
1: सुख में जाने स्थूल,
0: वर्ण कह दे उपदेश।

0: आया
1: साधु संतन पाए तन पाया
0: निकट निकट हर जान
1: सो दास गए परवान
0: अपनी दास को आप कृपा करे
1: इस दास को सब सोगी पाए
0: अगले संग आत्म उदास
1: ऐसी जरूरत नानक राम दास
0: की आज्ञा आत्म हतावे
1: जीवन मुक्त को पाए
0: सा हर खतसा सोग
1: सदानंद नहीं योग
0: सा सुवर्ण तैसी अस माटी
1: ऐसा
0: मान तैसा अवमान
1: ऐसा रंग
0: बरताए साई जगत
1: हर
0: ब्रह्म के सगले ठाओ
1: आपे
0: कर्ण करावन जोग
1: पावे सोई
0: आप हो अंत तिरंग मत दे तैसा परगास।

0: कोट होय पुजारी कोट पे तीर्थवासी यही कोट वेद के श्रोते यही कोट आत्म ध्यान तार है यही कोट नवतन नाम त्याग है यही कोट पे अपमानी यही कोट कृपण कठोर यही कोट पर दर्प को हिरे
1: यही कोट का दुख ना करे
0: यही कोट माया।

0: तहत है राखे
1: नानक सब कुछ प्रभु के हाथे
0: गई कोट पै बैरागी
1: राम नाम सब तलक लागी
0: गई कोट प्रभ को खोजनते
1: आत्म में पार ब्रह्म लहंते
0: गई कोट दर्शन प्रभ प्यास
1: तिन को मिलियो प्रभ अविनाश
0: गई कोट मांगे सत संग
1: पार ब्रह्म तन लागा रंग।

कई कोट पार ब्रह्म के दास कई कोट तत् के भेते कई कोट नाम रस पीव है कई कोट नाम गुण गाव है।

0: तीर्थ स्नान
1: प्रभु से सादक मुख ज्ञान
0: प्रभु कीट हस्त पतंग होए दिया
1: अनक जोर पर में परमिया
0: नाना रूप जो स्वागी।

0: ज्ञान पर गास
1: संसार का नहीं विनास
0: मन तन नाम रते एक रंग
1: सदा वसे पार ब्रह्म के संग
0: जो जल में जल आए खटाना।

जब लग जाने मुझ ते कश होए, जब यह जाने मैं किस करता, जब तारे को बैरी मीत, जब लग मोह मगन संग माए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, सहस खटे लख कोठ तावे, अनक भोग बिखिया के करे, बिना संतोख नहीं को राजे, नाम रंग सर्व सुख होए, कर्ण करावण आपे आप, कर्ण करावण करने हार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, जो किस किन्नो सो अपने

0: सबके साथ
1: आप किन्नो आपन बिस्थार उसते भिन्न कहो किछ होए अपने चलत आप करने हार मन में है आप मन अपने माहे सत सत सत प्रभ स्वामी सच सच सच सब कीना भला भला भला तेरा रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी।

0: संत के दुखन आर जा कटे,
1: संत के दुखन जमते नहीं छूटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन

0: नानक दूत पावे सोई ध्यान।
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
0: संत के दुखी को करके मिले सजाए,
1: संत का दुखी सदा सहकाये।

0: चलत करे खिन माहे
1: नाना
0: विदकार बंत बनाई
1: अपनी कीमत जापे पाई
0: सब काट तिसके सब तिसके ठाओ
1: जप जप जीवे नानक नाओ
0: राम के तारे सगले जंत
1: राम के तारे खंड
0: राम के तारे सिमरत।

0: संग रात जन रहे
1: गुर के वचन पदार्थ रहे
0: दाते दुख काटन हार
1: जाते संग तरे संसार
0: जन का सेवक सोबड़ भागी।

बारंबार बार प्रभ जपिए नाम रतन जन गुरमुख पाया नाम तन नाम रूप रंग नाम रस जो जन तिपताने उठत बैठत सोवत नाम बोलो जस हे बाजन।

0: मत ले।
1: जिस विश्व गुर का मन माने
0: तो
1: सतगुर जिस हृदय हर नाओ सर्व निदान जी का दाता ब्रह्म में जन जन्म है पार ब्रह्म सहस स्याण पुलया न जाइए।

0: कर बचन करन आगाने पूरा गुर अखियो जाका मंत्र गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
1: नानक जिस पावे तिस लए मलाए
0: जिहबा एक औसत अनेक काहू बोल न पहुँचत प्राणी निराहार निर्वैर सुखदाई अनक भगत बंधन नित कर सद बलिहारी सतगुर अपने
1: नानक जिस पर साध है सा प्रभु अपने
0: एहो हर रस पावे जन।

0: संत जना मिल करो विचार
1: एक सिमर नाम अवतार
0: और अपाप समेत विसार हो
1: चरण कमल चंद में अवतार
0: अन्न कारण सो प्रभ समरथ
1: कर कहो नाम हर वक्त
0: यह स्थान सांचो हो वह भगवान
1: संत जना का निर्मल मंद
0: एक आस रखो मन माह
1: सब रोग नानक मिट जाए
0: स्थान को चार कूठ उठतावे
1: सो तन हर सेवा के पावे
0: सुख को नित बादशाह मी।

0: कह हर अगम अपार
1: सब
0: निर्गुण प्रभु सहज सुभाए
1: सब
0: आप है आप अपनी जोत तरह अपने चलते आप कारण हार अविनाशी सुख अपने आसन जब पूर्ण करता प्रभु सोए जब व्यक्त गोचर
1: प्रवेका
0: जब नाथ निरंजन गोचर गादे अपने आप पिय
1: चर्जा
0: निर्मल पुरख पुरख पत होता यह निरंजन निरंकार निर्वाण यह स्वरूप केवल जगदीश ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समाव करावन कारण हार अपनी शोभा आपन संग बनाई सर्व कला आप हर परवीन अपनी आप पर तार।

0: आप कथे आप सुनने हार
1: आपे जाने सार
0: जाति सभावे ता श्रेष्ठ पाए
1: आपे पाने लय सुनाए
0: ते पेन नहीं किश होए
1: आपन सुसा जाय कत होए
0: आपको प्रभु जीओ आप बजाए
1: साचे।

0: नाम जपो ले बुलाए राजवा पार करो बापारी टेक रखो मन माए
1: जाए
0: रिश्ते दूर कहा को जाए पौ जपे सगल पौ मिटे प्रभ राखे दिस नाही दुख।

0: पूरी अमृत जा की दृष्ट
1: कर्ण
0: कमल जाके अनूप
1: रूप
0: धन सेवा सेवक परवान
1: अंतर जाने पर प्रदान।

0: वेद प्राण सिमरत मह देख वाणी प्रभ की सबको।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: Family Care Pharmacy.
2: पूरे BC विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581-1900।

धार्मिक दुनिया संघर्ष, राजनीति वे संघर्ष, अहंकार, मैं हम बट कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर, हम दाते ए बुद्ध कवे नासी। रविदास कहंदे ने मैं कवि तो कविता दा करता बन गया, कोई जात दा करता बन गया, कोई कुल दा करता बन गया, कोई ज्ञान दा करता बन गया, कोई सन्यासी सन्यास दा करता बन गया। हम बड कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, कोई योग दा करता बन गया, ज्ञानी गुणी सूर, हम दाते ए बुद्ध कवे न नासी, कोई दान दा करता बन गया। ते जिस दित्ते हुए दे नाल करतापन जुड़िया होया है ओनू दान मनिया ही नहीं गया, ओह ते मनुख दे हत्थां च ही है, क्योंकि करतापन ते नाल जुड़ गया, ओदा अहंकार ते नाल जुड़िया है। तीर्थ वर्त दान कर मन में धरे गुमान, नानक ने फल जात तय ज्यों कुन चरे इस नाम। धर्म दी साधना दी सफलता किस तरह मनांगे, जितना मैं मिटदा जाएगा समझ लो सफलता मिलती जा रही है, और जिस दिन टोटल मैं मिट जांदा है तो प्रगट हो जांदा है। तो करता तो भया मुझ में रहा ना हो, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तद तो। चारों पासे कबीर दी महिमा बड़ी हुई, उपमा बड़ी हुई, इस दे ज्ञान दी, इस दे व्यवहार दी, इस दी जीवन शैली दी। ते कुछ एक ने मूह दे उते उपमा की थी, कबीर धन है तो अब दी ज्ञातली अर्ज करा। उपमा करना मनुख दी एक मजबूरी है, निंदा करना मनुख दी एक मजबूरी है। उपमा ए उस दी करदा है जो इसका भविष्य होवे, जो ये होना चाहता है, जो ये बनना चाहता है, वरना उपमा कर नहीं सकता। कोई किसी फिल्म स्टार दी उपमा पिया करदा है, कोई राजनीतिक दी उपमा पिया करदा है, कोई किसी संत महापुरुष दी उपमा पिया करदा है, मनुख ओही कुछ होना चाहता है, वरना उपमा का कोई मतलब ही नहीं। मनुख निंदा कर रहा है अपने ही माजी की, निंदा कर रहा है पशु सी पशुआ वाली कृत किधरे प्रगट हो रही है, निंदा पिया करदा है। दरअसल अपने पिछोकड़ नु ही बंडदा पिया, और कुछ नहीं। अगर इस तरह देखो या इंज कर लो, ये निंदा कर रहे है अपने माजी दी, ये उपमा कर रहे है अपने मुस्तकबिल दी, ये निंदा कर रहे है अपने अतीत दी, ये उपमा कर रहे है अपने भविष्य दी। लाजमी है, ये हकीकत है, एक बहुत सच्चाई है, वरना मनुख उपमा कर ही नहीं सकता। उपमा लाजमी अगे मनुख दी मंजिल है। मनुख वैसा होना चाहता है, उस वर्गा होना चाहता है, ताही ते जो है उपमा कर रहा है, वरना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कहने जिस दिन मनुख नु मंजिल लग पई, दो चीजा मिट जाती, निंदा ते उस तो मिट जाती, खत्म हो गया अतीत, खत्म हो गया भविष्य, मंजिल ही मिल गई, ठिकाना ही मिल गया। उस्तत निंदा तो सन वैत हो जाता है, उस्तत निंदा दोग दे आगे खोजे पद निर्वाणा, पर जन नानक ए उखेल कठन है किन हो गुरमुख जाना। अगर कोई निंदा कर रहे है, इतनी गल समझ लेना, अपने पिछोकड़ दी निंदा कर रहे है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर कोई मनुख उपमा कर रहे है तो अपने भविष्य दी निंदा कर रहे है, ये कुछ होना चाहता है, वरना ये हो नहीं सकता है कि एक राजनीतिक दी उपमा करे, ये राजनीतिक होना चाहता है, एक बादशाह दी उपमा करे, ये बादशाह होना चाहता है, एक फिल्म एक्टर दी उपमा करे, ये एक्टर होना चाहता है। मैं ते भारत देश देख के हैरान होना है, एक फिल्म एक्टर किधरे आ जाता है, लखां दी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मनो कोई कुछ होना चाहता है, उसी दी परिक्रमा करेगा, उसी दे आले दुआले घूमेगा, और की है। मनुख अपने भविष्य दी परिक्रमा करदा है, मनुख अपने अतीत दी निंदा करदा है, जो पिछे पशु जगत दे च ए कर चुके है, वो जद किधरे किधरे भी इसनों दिखा

चार पौड़िया ने सुनिए लिया, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। शरीर नो भूख लगी है, एक एक भोजन दी बुरकी अंदर जाएगी, भूख बाहर निकलेगी। मन विच बेचैनी है, पाप है, संताप है। गुरु दा शब्द जैसे मन विच जाएगा, संताप पाप बाहर निकलेगा। सुनिए दुख पाप का नाश, लाजमी ना सुन। पर मन दे शब्द तां प्रवेश करेगा जे मन सुने, नहीं सुनदा तो शब्द मन तक नहीं पहुंचेगा, ना फिर पाप धुलणगे ना दुख मिटणगे। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। वो जो अनाहद नाद है ओनू कबीर कहिंदे ने, ओहंकार है। ओनू गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने ओहंकार है। ओनू गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने ओहंकार है। ओनू स्वामी महावीर जी कहिंदे ने ओहंकार है। ओनू अद्धे उपनिषदां दे ऋषि कहिंदे ने ओहंकार है। पर अद्धे चूंकि 108 उपनिषदां ने, इहदे च 60 उपनिषदां दे आचार्या उन्हां दे नाम नहीं ने। उपनिषदा दो चार ही ने जिन्हां च नाम मिलते ने, बिना नाम तो ये ग्रंथ ने, किसने लिखे हुए कोई पता नहीं। पर 108 ने, जिहड़ा 108 उपनिषदा बनारस तो पढ़ के आ जांदा है ओनू डिग्री मिलती है श्री 108। श्री 108 पूरा कोर्स होंदा है, उहदे नाल तीन वेद भी पढ़े जांदे, अथर्वण नूं छोड़ के तीन वेद भी पढ़े जांदे, फिर उन्होंने डिग्री मिलती है श्री 111। 108 उपनिषद ते तीन वेदां दा पूर्ण ज्ञान हासिल करने वास्ते, क्योंकि दास निर्मलियां दे डेरे बनारस थोड़ा चल रहे है, 35 साल लगते हैं। 35 साल जिंदगी दे 35 साल से पहले पढ़न ते लगा, 20-25 साल की उम्र हो वे ते बंदा पढ़न बैठे, गई जिंदगी ते गई। अक्सर ए बुढ़ेपे च डिग्री मिलती है, मैं ते हैरान होना, ए डिग्री साड़ी नहीं है। पर गुरमत दे सारे जिहड़े संत अपने आप नूं आखांदे ने, सारिआं दे नाल लिखिआ हुंदा श्री 108, श्री 108। हालांकि गुरबाणी की ग्रामर का भी पता कोई नहीं, अर्थां दा अनर्थ करी जांदे हुंदे ने, और इतिहास भी वो नहीं सुना दे, मिथ्यास भी उन्हां दा अपना ही बनाया होंदा है। ते फिर भी श्री 108, श्री 111 उन्हां दे नाल लगे होंदा है। खैर एते में विचकार जो है गल आ गई। 60 उपनिषदां दे ज्ञानी ए कहिंदे ने, ओ आवाज ओम है, ओ धुनाकार आवाज, ओहंकार दी आवाज भी धुनाकार है। ओहंकार जिवें घड़ियाल वजाया ते आहिस्ता आहिस्ता उहदी धुन मध्यम आउंदी है, सेम इस तरह की आवाज ओहंकार दी और इस तरह की आवाज ओम दी। कुछ उपनिषदां दे ज्ञानी कहिंदे ने ओ ओम है, कुछ कहिंदे ने ओहंकार है। मैं रात अर्ज कीती सी, 4000 साल पुराना तीर्थ है भारत विच नर्मदा दे कंडे ते, इस तीर्थ दा नां है ओहंकार। 4000 साल पुराना मंदिर है, पहाड़ नूं तराश के जो बनाया गया, उस मंदिर दा नां है ओहंकार। रेलवे स्टेशन दा नां ओहंकार है, शहर दा नां ओहंकार है, मंदिर दा नां ओहंकार है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दक्षिण दी फेरी ते इस तीर्थ ते आंदियां जांदियां रुके ने, जन्म साखी ते इंज मिलदा है जांदियां ही रुके ने। पर पिछले साल मध्य भारत गवर्नमेंट ने एक किताबचा छापिया सी और वंडिया सी, अद की कुंभ ते भी वंडिया गया, भई आंदियां जांदियां दोवें वक्त ओ ओंकारेश्वर ठहरे ने, ओंकार जी दे ठहरे ने गुरु नानक। पिछे जद कुंभ दा मेला सी ना, ते सर्वधर्म सम्मेलन सी, सिख धर्म दी तरफों दास नूं बुलाया गया सी, मैं पहुंचिया सी। 4 करोड़ दे करीब मनुखां ने
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਜੈਨ ਦੇ ਸਿਪਰਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 4 ਕਰੋੜ। ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਭ ਤੇ ਉਜੈਨ ਆਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਗਏ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ 4 ਪੁਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਜੋ ਇਤਨੀ। ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਨੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, 4 ਕਰੋੜ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 100 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਓਅੰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੱਕਣੀ ਓਅੰਕਾਰ, ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਦੱਕਣੀ ਓਅੰਕਾਰ। ਓਅੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓਅੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਨ ਚਿਤ, ਓਅੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਵੈ, ਓਅੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਤਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਓਅੰਕਾਰ ਤੇ ਓਮ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਣੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੁੰਨ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲੋਗੋਸ ਹੈ। ਗਰਸ ਕੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀਏ, ਉਹ ਅਨਾਹਦ ਨਾਹਦ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ। ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਵੀਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ। ਔਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ, ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਓਅੰਕਾਰ ਅਨਾਦੀ ਕਥਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਹੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾ, ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਹੋਇਆ ਓਅੰਕਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ, ਉਸੇ ਕਵਾਓ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁ ਅਨੰਤ ਸੂਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਲਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਫਿਰ ਕਈ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਬਣੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਿਕਤਰ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਫਿਰ ਕਈ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ, ਧੁੰਦ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਧੁੰਦ ਪਾਣੀ ਬਣੀ, ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਹਨ। ਪਾਹਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਪਵਨ ਸ਼ਬਦ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘੜ ਘੜ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹਰ ਤੱਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਵਨ ਕਰਕੇ, ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੇ ਪਵਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰਕਰਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ? ਬੋਲਣਾ ਪਵਨ ਕਰਕੇ, ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਾਲ, ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਚਾਲ। ਟੁੱਟ ਗਈ ਪ੍ਰੀਤ ਬੁਰ ਬੋਲ, ਦੋ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚ ਬਦਲ ਗਈ।
गंड परीति मीठे बोल, दो मीठे बोल बोले ओपरा बंदा अपना हो गए, मित्र बन गए। संबंध जुड़दे ने बोल चाल ना। एक सियाणा मेहमान एक कोई दिन दे अंदाजा ला लैंदा है दो बिरावां दे संबंध ठीक नहीं ने, क्यों बोलदे ही नहीं, बोलदे ही नहीं। एक सियाणा मेहमान एक कोई दिन दे अंदाजा ला लैंदा है पति पत्नी दे संबंध बिगड़े हुए ने, क्यों बोलदे ही नहीं, ते जे बोल देन ते कुरख्त बोल दे, वो बोल बोल देन जेदे नाल प्रीत टुटदी है, फौरन अंदाजा लग जांदा है। संसार नाल संबंध जुड़दे ने बोल के, निरंकार नाल भी संबंध जुड़दे ने बोल के, मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यास, बोल के ही संबंध जुड़न गए। पर एक फर्क है, संसार दे च असी देखदे पहले आ मनुख नूं, बोलदे बाद च। निरंकार दी दुनिया च ए नहीं, बोलना पहले पेगा दिखाई बाद च दे। उम्मीद गल पकड़ दे चाहिए, वाहेगुरु वाहेगुरु जपना ते पहले पेगा, गुरु दी बाणी जपनी ते पहले पेगी दिखाई बाद च दे। क्यों जैसे कई पशु पंछी जमदे आ उन्हां दी अखां बंद होंदियां सहजे सहजे बाद च खुलदियां ने, जन्म तो साडे शरीर दी अखां ते खुलियां होंदियां ने, मन दी अखां पूरियां नहीं खुलियां होंदियां। ए भी मैरस करते हैं, मन दा सिर्फ इक्को ही भाग जागया है, नौ भाग सुते हुए ने, थोड़ी जी अख खुली है तो थोड़ी जी चीजा की समझ है बाकी नहीं, थोड़ी जी चीजा की असलियत दिखाई देती है बाकी नहीं। वो जो वाहेगुरु वाहेगुरु जपना है, वो जो बाणी जपनी है, ये वाहेगुरु नु सुनाण वास्ते नहीं, अपने आप नु जगाण वास्ते। सिमर सिमर गुरु सतगुर अपना, सोया मन जागाई, जिस दिन मन पूरा जाग जांदा है, इस ग्रह में कोई जागृत रहे साबत वस्तु को अपनी रहे, जिदा मन पूर्ण तौर ते जाग जांदा है वो फिर परमात्मा नु देखण दे सफल हो जांदा है। वो ऐलानिया कह देंदा है, दोए दोए लोचन पेखा और हर बिन अवर न देख, नैन रहे रंग लाई। जे कबीर नु पुछिए, ध्यान नाल सुनना, मैं थानू परमात्मा दी गल सुना रहा, मेरी स्टडी है, मैं पढ़े मैं सुने, पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने एक अनुभवी पुरुष एक संत जद परमात्मा दी गल करेगा सुन के नहीं पढ़ के भी नहीं, उदी स्टडी नहीं होवेगी, वो वेख के परमात्मा दी गल करेगा। दोए दोए लोचन पेखा हाँ हर बिन अवर न देखा, संतन की सुन साची साखी। गुरु अर्जन देव जी महाराज, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो बेखे आखी, जो अखा नाल वेख जबान नाल कह देता। ये बोल गुरु ग्रंथ साहब दे और एक कवि दी कविता, जमीन आसमान दा अंतर है। मैं जमीन आसमान दा अंतर कह रहे हैं, भावे कविता कितनी चंगी क्यों ना, ये कविता ओदे दिमाग चो निकली है, ओदे विचार तो निकली है, भावे बड़ी उच्ची होवे जरूरी नहीं उतना उच्चा उसका अनुभव भी होवे, उसका जीवन भी होवे, ये कोई जरूरी नहीं है। जिन्नी उच्ची गल कह रहे है वो उन्हें देखी भी होवे कोई जरूरी नहीं है, पर गुरु दी बाणी परमात्मा नु वेख के आखी गई है, जो वेखे है वो कह देता है। कबीर कहंदे ने मैं परमात्मा दी गल कर रहा वेख के, दोए दोए लोचन पेखा हां हर बिन अवर न देखा। ते असी किवें भरोसा करिए, तुसी वेख के गल कर रहे हो, सानू की भरोसा है, इहदा प्रूफ की है? तुसी परमात्मा नु वेखिया ते कह रहे हो, असी कह सकदे तुहाडी स्टडी होवेगी, तुसी सुनिया होवेगा, तुसी पढ़िया होवेगा, तां कह रहे हो। कबीर कहंदे ने है मेरे कोल प्रूफ, मैं सबूत दे सकता, मैं वेख के कह रहा। की सबूत है? कबीर कहंदे ने मेरी अखां ही सबूत ने, नैन रहे रंग लाई अब बेगल कहन न जाई, मेरी अखां च थानू रब दा रंग मिले।